0: FM 91.9.
1: BJ 단체 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437.
2: अहिले बिहानको 6 बज्यो

శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ మౌలకాళికాదేవే నమః. విద్యుదామ సమప్రభా మృగవతీ సందస్థితాం వీషణాం కన్యాభిః కర్వాలకేటు విలసదస్తవిరా సేవితాం హస్తే చక్రగదా శిఖ్యేటు విష్కాం చాపం గుణం తర్జనీం బిభ్రాణమణలాతికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే. దేవీ భగవతీ మౌలకాళికాక చరణమా హార్దిక నమన్. తపాయింకు అంతర్దిల్మా విద్యమాన ఆత్మస్వరూపీ పరమాత్మలాయ నమస్కార్. म दिनपालको उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजयफएम 101.6 को प्रभात कार्यक्रम प्रस्तुति कार्यक्रम आराधनामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. म कृष्णमणि, प्रविधि संयोजन मित्र राजेन्द्र एवं अरुणका साथमा आजको यो सुखद वर्षाईमा तपाईँ हामी दीपयात्रा गरिरहेका छौँ. धार्मिक सेवा समिति मौलकालिका मन्दिरको सहयात्रा एवं सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमलाई यहाँले प्रत्येक दिन यो शुभ बिहानको 5 बजेदेखि सुन्दै आउनु भएको छ. आउनुहोस् कार्यक्रमको श्रृङ्खला सक्रम आजको पञ्चाङ्ग सङ्घर्ष सम्बन्ध जानकारीबाट. आज मिति 2083 साल भाद्र 26 गते शुक्रबार, तदनुसार सेप्टेम्बर 11 तारिक सन् 2026, अहिले भाद्रपद कृष्ण पक्षको औँसी तिथि औँसीको घडी बेला रहेको छ. केवल 7:19 जुन अहिले बिहानको 8:43 हुनेछ. साथै पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेको छ 21:10. यसको अवधि भने अपराह्नको 2:15 रहेको छ. साध्य योग रहेको छ. स्थिगिरी करणमा नाग एवं स्थग्न करण रहेको छ. आनन्दादिमा सिद्धि योग छ. सिंह राशिमा चन्द्रमाको अवस्थिति रात्रिको 8:11 रहेको छ. दिनमान 31:01 रहेको छ. सूर्योदय बिहान 5:47 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ. आज कुशी औँसी कुशच्छेदनमको पवित्र दिन, यसै गरी कुश ग्रहण बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि आज नै रहेको छ. साथै स्नानदानका लागि औँसी पनि आज नै रहेको छ. साथै हलो बार्ने दिन तथा गोकर्णमा स्नान गरिने दिन पनि आज नै रहेको छ. र साथसाथै युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीको पावन दिन पनि आज नै रहेको छ. यी समस्त व्रत पर्व महोत्सव आदिलाई एकैसाथ लिएर उदाएको यो दिनलाई स्वागत गरौँ. आउनु सर्वप्रथम यस पवित्र दिनलाई स्वागत गर्दै अबको क्रममा भने हामी शक्तिको उपासनाको सन्दर्भसँग जोडिँदैछौँ. ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः. शक्ति स्वरूपिणी देवी भगवतीलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ, वन्दना गर्दछौँ. भगवतीको यो वन्दना हाम्रा जीवनमा सुख समृद्धि प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण